0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच सजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नू 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं लियाउणा होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी क्यों पई तुरक सुबत जैसा जिस भाए जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज स्वभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो ये साडा राज है। मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता है मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकदा है रवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया। हो सकदा वो इलाके दे विच बदनाम होवे जबर खां पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिजनी को इक तुरंग चढ़ायो ए कुरीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा पठान नूं भी खड़ा कर लिया पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया बई असीं इहनूं ऐवें नहीं लै के जा रहे इहने आह कुकर्म कीता है इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै के जा रहे हां।
0: कै दोनों को अपर ना छेरा शीघ्र करत गमने तिस बेरा।
1: दोनों नूं पकड़ लिया उस वक्त शीघ्र ही उत्थों वापस

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुर के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनू चंगियां निहारियां खवाईयां चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लै आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके लै आवो
0: सोने दे सोहने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके लै आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े दे भी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहने छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया।

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नू हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नू भजाउणा, सूरज वल नू मूह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नू भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नू भी पता लग जाता है कि बंदा तकड़ा जेड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नू भी पता लग गया कि मैनू किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता की, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नू इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने माता

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैणा करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: सिर पर शत्रु प्रबल विचारो।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा सुभाष सिंह जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग के सरवण कर रहे हैं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं, संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे ने। सो इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं अते देखना कि सिंघ किन्ने कु सुचेत होए ने अगे नालों। ऐसियां साखियां सरवण कीतियां सोहणियां। पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है। बहुत दुखी हो के भीम चंद ने सारे राजां नूं चिट्ठियां पा के बुला लिया है अते आपस विच विचार कर रहे ने कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहीदा मिलके, बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने, नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे दबा लैणगे आपां नूं। सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने। आओ सत्कार नाल इतिहास श्रवण करिए, रसना करिए, पवित्र गज के आखो सा

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी डरते यह तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है इन्ने बली ने इन्हों के सिंह इन्ने योधे ने सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम
0: इन्होंने कई बारी अपने नाल जंग कीता है अपना जिहड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने

0: सच्चे पातशाह ये महाराज ये तुहाडा ही पंथ है हुण पंथ की कटिया हो रही है भाव कट वड हो रही है पंथ हुण हार रहा है पहला नहीं सी दिखिया महाराज कहते जद असी बचन किया उदों तुहानू याद नहीं आए असी ये छत्र छाया ही ठीक रहिंदी गुरु साहब की जे छत्र छाया छड़ दिए फिर लोग चारे पासों पै जांदे हन
1: क्यों ना संभारत हट पिछवाई कौन खता इनके घर पाए
0: महाराज केड़ी गलती होगी सातों क्यों नहीं तुसी पिछे हटदे क्यों नहीं साडी मदद करदे
1: जे कर सिंह है अवगनियारे तौ आपके जगत उचारे
0: जे सिंह अवगनियारे ने ता भी जग ने तो होर कुछ नहीं कहना जग तो फिर भी यही कहेगा कि कलगियां वाले दे सारे सिंह ने
1: इत्यादक बोलत समदाए मिले आन को हैन तवाए
0: तो इत्यादक सारे बोलते ने तो घोड़िया भजाते ने कि महाराज नू मिलिए
1: करत पुकार सो आए कनेरी हित हेरन गुर ग्रीव न फेरे
0: भजाते ने घोड़े आपो अपने मगर मगर महाराज तेज घोड़ा भजा रहे ने पर सतगुरु जी ने पिछे नू अपना मुख कीता ही नहीं है कहंदे मैं नहीं रुकना हुण
1: कहे बहुत प्रभ छिन पर थिरो लड़त पंथ अवलोकन करो
0: बड़ा कहा महाराज एक छिन लई टिक जाओ सिंघां नू देख लो सिंह किवें जंग कर रहे ने घिर गए हन
1: कह जब रहे

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकलो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्थां दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। या गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सिद्धे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जाती तो माफी मंग लो। यही दस्या है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेहर करो सातों को गल

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनों दे दल नू मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, ए वर हो गया खालसे नू, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नू बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नू, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नू मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नू शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नू, दुबारा जिहड़े इधर नू मुड़े आ रहे सन पिछे नू वापस पहाड़ियां वल नू
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नू देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां इको ही किस्म बरछे दियां ने, तोमर ते शेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने, उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کہ جی میں

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल। भी ये सिख है
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणा नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वो सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ साहिब

0: सुपते निसमय सतगुरु मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी कीनो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है, सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है, उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना कहड़ी नदी दे पास जमा पिया है, फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तो भी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी, आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितों नाल कर रहे ने, जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी। इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे, सुते सिद्धी सतगुरु कवियां की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी का है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते, कवियां दे ज्ञान नूं परखना उन्होंने जवाब देने ने, उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच इह गल इस तरह नहीं है, इह गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां प्यार सत्कार नाल, दसना नूं करिए पवित्र गज के आखो।

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थे देने के एक ता बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम दी भगती दी गल नहीं आउणी, कोई उपकार दी गल नहीं, कोई सेवा दी गल नहीं, चज दी गल ता मन च आउणी नहीं कलयुग विच। बस जदों कदों मन च विशे विकार ही रहा करनगे लोकां दे, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़ियां गल्लां करनियां, बस यही मन च चितवणगे कि कदों विशियां च परिवर्त होईए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम दी गल करेगा नाउ लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नी दुनिया बदनामी करेगी।
0: भेद बेच दे भेद तार भूम बेच दे छत्रे।
1: भेद तार जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच ओह वेदां नूं बेचणगे विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताईं पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे।
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूद्र बेचते पुत्रे।
1: बाणी अपना घर बेचिया करनगे, शूद्र जिहड़े ने अपने पुत्र नूं बेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे किहड़ा मेहनत करे किहड़ा काम करके खावे। इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जट्टा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटां लंबियां लंबियां बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी विछा लैणी वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विशियां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे, ते अंदरों कम जिहड़े ने ओह बाले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आ के मिल गया, और कुकर्म इन्ने करया करनगे भई इह कहा करनगे मैनूं संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह की दुनिया हौली हौली बन जाएगी।
0: आप नरक अवरण नरक करनी बने न लाग।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा ते दूजियां नूं भी नरकां विच लैके जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा भाव, छोणगे भी नहीं, ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जाएगी।
0: लोकन तो वंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: वंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा कि दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने ओह संसार नूं ज्ञान दियां, ताहीं एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां

कलयुग पुत्र कलयुग दे विच ओह बंदे नूं तू चंगा मन्नी जिहड़ा बंदा अपनी इस्त्री विच जती होवेगा ओह तो डरी क्योंकि ओह बंदा बड़ा चंगा है जिहड़ा सच दी विचार करेगा की खाणा ते की नहीं खाणा ओह बंदा भी चंगा ओहदे

0: इस तरीके दे नाल जिहड़े ना वेद विच ए गल लिख दित्ती है कि धर्म दे केड़े अंग नाल ब्रह्मा दे केड़े अंग भाव युग विच मुक्ति होनी है, कल युग विच किवें मुक्ति होनी है, सत युग विच किवें होनी है, त्रेते विच किवें, द्वापर विच किवें, सारिया युगां दा आपो अपना धर्म है। सत युग सत, त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों देने, कल केवल नाम आधार, कल युग दे विच केवल नाम दा ही आसरा चलेगा, बाकी सारे आसरे खत्म हो जाणगे।
1: सोई सो साची भले सकल समाला कीन।
0: सो इस प्रकार दे नाल कहिंदे ओहो पिछे कही गल सच्ची है, ओ गल भली है, सारी दा संभाला तुहानू करा दिता है, पा अथवा तुसां समूला कर लिया, याद कर लिया, मैं तुहानू दस दिता कि मेरे समय विच की वर्तारा वरतेगा।
1: अपनो अपनो राज कर तुम आयो मम धाम।
0: ब्रह्मा ने सानू कहा कि आप अपना राज करके तुसी वापस मेरे घर जा जाना।
1: कर कर करनी कल्प लग पाइयो आए आराम।
0: तो कर करके अपनी करनी कल्पां तक, एक कल्प जेड़ा हुंदा है, एक कलम जैसा हुंदा कि दस युग जदों लंघ जांदे ने, इस तरीके नाल अपनी करमी करके, करमी आपो अपनी करके, फिर मेरे कोल सेनता विच ब्रह्मा दे वाक कहने, ये वाक ब्रह्म सेनता विच कहे हुए इन्होंने लए ने कि जप जिहड़ा चार प्रकार दा, इस ढंग दे नाल चार वेद, ये सारिया चीजा जिहड़ियां ने ये सुनाईया कलयुग ने आके महाराज नूं।
1: ब्रह्मा वाक कै संगता परा पसंती जाप।
0: तो ब्रह्मा ने संगता विच कहिंदे अगे जाके दसदे ने कि जाप लिखे ने, परा बाणी, पसंती बाणी, ये सारिया बाणिया दे जाप।
1: मदमा वैखरी जाप रस चार वेद इस थाप।
0: फिर जिहड़ी बाणी लिखी है मदमा बाणी है, फिर इस प्रकार बैखरी बाणी, बैखरी मुंह नाल बोल के जिहड़ा जाप हुंदा, मदमा कंठ विच हुंदा, पसंती फिर हिरदे च, परा बाणी नाभी च, ते इसे प्रकार अगे रोम रोम दा जाप है। तो इन्हां विचों किसे द्वारा नाम दे जाप दा रस लवे बंदा।
1: नारायण देव है परा का नरपसियंती इष्ट।
0: तो नारायण देव जेड़ा है ये परा बाणी दा है मालक, ते जेड़ा नर है ये पसियंती दा इष्ट भाव, जेड़ा देवता श्रेष्ठ इष्ट नूं कहिंदे ने। तो इस तरीके नाल कहिंदे ने कि जिहड़ा देवता है ना पसंती बाणी दा, ये नर आप है, नर ते नारायण दोवें विष्णु दे अवतार मन्ने हन।
1: स्वास ठहरावै नाभ कर उठे तरंगी तोज।
0: इस तरीके नाल कहिंदे जे नाभ दे विच स्वास ठहरावेगा तो इस तरीके नाल फिर उहदे विचों आनंद दी लहर उठदी है। इस तरह दे इन्हां दे जाप आदिक दस रहे ने।
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज।
0: तो नाम भगत की जुगती दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना ये कुदरती ही हो जाता अपने आप, जे मूह नाल वाहेगुरु वाहेगुरु करो तां ये बैखरी बाणी हुंदिया हुंदिया कंठ विच जाप अपने चलिया जाता अपने।
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज।
0: तो नाम भगत की जुगती दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना ये कुदरती ही हो जाता अपने आप, जे मूह नाल वाहेगुरु वाहेगुरु करो तां ये बैखरी बाणी हुंदिया हुंदिया कंठ विच जाप अपने चलिया जाता अपने आप ही, फिर हिरदे विच चलिया जाता, फिर धुनी विच जाप चलिया जाता, फिर रोमा विच जाप चलिया जाता। कहने इस तरह जाप का आनंद माणो कलयुग दे समय विच।
1: ए साखी सत गुर दे परत सुनत सुख सम।
0: कहने सारिया नालों श्रेष्ठ सुख दिंदी है साखी, ये जिहड़ा पढ़दा सुनदा सुणाउंदा कमाउंदा। आपां जाण लिया कि कलयुग दे विच होर कोई चीज कम नहीं करनी, एवें भटकण दी लोड़ नहीं, थां थां दे उत्ते जाण दी लोड़ नहीं, वाहेगुरू वाहेगुरू जपया करो, सब तो श्रोमणी है। और कलयुग कहना मेरे समय विच महाराज, एक जगह कलयुग ने यह भी पुछणगे, कलयुग तू किसे तो डरिया भी करेगा, किसे तो नहीं डरदा, कहना मैं महाराज कहने किसे तो डरेंगा ही, कहने एक वाहेगुरु मंत्र तो मैनू बहुत डर लगता है, बाकी तो किसे तो मैं डरदा ही नहीं, सारे मैथों डरनगे, पर जिथे वाहेगुरु का जाप होवेगा ना जी उथे मैनू अग लग जाती, फिर इस करके मैनू तकलीफ बड़ी तो हुंदी आ, पर तुहाडी हजूरी विच मेरी पेश नहीं जाती, जे किते गुरु

0: चारे पास अपने आप नूं संकोचना है, निर्गुण दे विच लीन होना है। वह इस तरीके दे नाल इन्हां सारिआं जिहड़े मूल मंत्र का अभ्यास करना अथवा वाहेगुरु के दर्शनों वास्ते किसी कार्य लई हिरदे की शुद्धि लई शुभ गुणा के संग्रहण लई ये सारे कार्य मूल मंत्र दे विच हो जांदे हन।
1: प्रथम मार जिन होम बिद लिखकर सब समझाए।
0: सो पहला होम दी विधि, फिर जल उत्ते मंत्र उचार के अंगा नूं उस नाल इशनान करना इत्यादि कहिंदे ये सारियां चीजां समझाईयां। यही क्रिया सरोवर दे विच हुंदी रहिंदी हर वक्त। सरोवर दे जल दे विच गुरबाणी दे प्रवाह दा असर पैंदा है। सारिआं नालों वध पानी दे विच शक्ति खिंचण दी बहुत ही ज्यादा है, धरती विच हले घट है। पानी शक्ति नूं ज्यादा खिंचदा है। ये जिहड़े थोड़ा जिहा साइंस दे उच्च क्लास दे विद्यार्थी ने उन्हां नूं ज्यादा पता इन्हां गल्लां दा कि पानी सब तों वध अपने विच ग्रहण करदा, हरेक चीज नूं, आवाज नूं भी ग्रहण कर लैंदा। इस करके क्योंकि पहला पानी जीव है, पानी जीवत रूप विच है, जित हरिया सब कोय। ज्यों ज्यों पानी दे उत्ते बाणी दा असर पैंदा, पानी ओह पवित्र हुंदा जांदा, रोगां नूं कट्टण लई समर्थ हो जांदा। इसे करके महाराज जिथे भी गए ने, किते कुछ पंचमी दा इशनान, किते कहिंदे इत्थे इशनान करो, किते कहिंदे इत्थे इन्ना इशनान करो। उस इशनान दे नाल शरीर दे उत्ते बहुत अच्छा प्रभाव पैंदा है।
1: महा महात्म मंत्र ए चार पदार्थ गाए।
0: महा महात्म मंत्र है जिहड़ा चारे पदार्थ ने उन्हां नूं देण वास्ते इह जिहड़ा मंत्र महाराज सच्चे पातशाह ने मूल मंत्र दा अभ्यास आपां नूं बख्शिश कीता है।
1: दोहेरा अखर 36 पंच पुन 25 तत् सुजान, गुरप्रसाद पद अगर तै लखो सिख बुद्धिमान।
0: सो कहिंदे ने जिन्ना भी इह मूल मंत्र दा पाठ तुहानूं बख्शिश कीता है सियाणिओ, ये गुरप्रसाद तक पढ़ना, मूल मंत्र दा पाठ करना, ते इहदे नाल सारे जितने कार्ज ने गुरां दी खुशी लैण वास्ते पढ़ना जां गुरां दे दर्शन करन वास्ते पढ़ना, जिस कार्ज लई भी मूल मंत्र दा अभ्यास करोंगे उसे तां ही बख्शिश हो जाएगी।
1: हर लिख बे मैं वर्ण अख पांच प्राण के माज।
0: सो इसे तरह इहदे लिखण दे विच जिहड़े वर्ण अठ, ये अठ वर्ण लिखे ने, भाव अठ अखर जिहड़े बन जांदे ने, जिवें इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर दे चार अखर ने, प्रसाद दे तीन अखर ने, एक ओंकार नूं इको ही गिणना है। इउं कहिंदे ने जिहड़े अठ अखर ने अथवा होर जिहड़े सारे अखर ने इन्हां नूं गिणन दे विच गिणती अठ आ गई, किसे दी पंज आ गई, कईआं दी गिणती 25 गिणी, किसे दी 36 गिणी। तो कहण दा भाव महाराज ने कि जिन्ना भी मूल मंत्र दा पाठ है ये हरेक कार्ज दे विच ही हर सिद्धि नूं प्राप्त करन लई। सिद्धि दा मतलब इत्थे रिद्धियां सिद्धियां नहीं है, सिद्धि दा अर्थ हुंदा सफलता। हर कार्ज दी सफलता वास्ते ही पाठ कीता जांदा है।
1: 36 लाख आहुत दे मुक्त होए तत्काल।
0: 36 लाख ऊतियां देना लिखिया इत्थे कि जिस प्रकार धूप समगरी आदि तैयार करके कोलियां दे उत्ते पाठ करते जाओ, समगरी पाते जाओ। पर महाराज जी ने तो बाणी के अंदर इस चीज का तो खंडन किया होया, जिथे भी खंडन की गल आ जाती फिर आप खंडन भी कर दें। सतगुरु महाराज ने अज तक जिन्हों मैं अभ्यास करते देखिया, बड़िया तो बड़िया, छोटे छोटे की किसी की गल नहीं, बड़े तो वड्डा कोई यह जहा कर्म मैं करता देखिया नहीं है। वह सिर्फ मूल मंत्र का जपजी साहब के पाठों का सुते सीधे अभ्यास करते देखे ने। सवेरे उठना उन्होंने 1 बजे के करीब, अपना सारा दिन ही पाठ करते रहना। उन्होंने सतगुरु महाराज ने इसे तरह ही बख्शिश की। ये जड़िया हूतियां बस यही है, ये गावी है, सुनी है, मन रखी है, भावो दुख पर हर सुख कर लै जाए। जिहड़ा पाठ तुसीं मूंह नाल पढ़ो ना, इहनू कहिंदे कन्न नाल जरूर सुनो। जे कन्न नाल नहीं सुनना तो अंदरों जदों अंतरीव गुप्त रूप विच पढ़दे हैं ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹਵਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ

0: लग जाओ कोई गल नहीं, जे मन मुल गुणों मुल व्यापार तक ठीक चलिया अगे पहुंच के ध्यान आया मुंदा संतोख सरमपद चोली बिचलियां पौड़ियां सुनन तो रह गई उत्थों मुड़ के फिर अमुल गुण तो आ जाना भी ये तो मैं सुनिया ही नहीं गा। यदा मतलब यह नहीं हुंदा कि असी तो माड़ी जी इत्थे कोई दुनियावी कहानी रह जाए ना बिच कि लाइट चली जाए तड़फदे लोग सीरियल देखना सी सीरियल बिच रह गया साडा बाकी दी चीजां नूं अखबार च कोई चीज लड़ीवार आउंदी होवे ओह भज भज के पढ़नगे जे जपजी साहब का पाठ सुनना बचाले नहीं छड़ देणगे चल इत्थे कड़ा कोई फर्क पैंदा फर्क तो बहुत ज्यादा पैंदा और आपां नूं इस गल की सोझ ही नहीं इस करके संपूर्ण पाठ ही अपने कन्ना नाल सुनो
1: दोहेरा गुरु नानक करना करे पंथ बतायो सिख
0: ये गुरु नानक देव जी ने कृपा कीती है कि सिख नूं पंथ दा अर्थ है रस्ता दस्या है जपजी साहब दा पाठ किवें करना है
1: गुरु अर्जन वर्णन करे अर्थ ख्यात पालिक
0: अर्जन देव जी ने कृपा कीती है भई अर्थ नूं ख्यात हुंदा प्रगट करना प्रगट करके लिखा दिता सारयां दे भले वास्ते दसदे तां इक नूं ही हुंदे ने ते इस करके ना दसण दे नाल इक नूं ते फल जिहड़ा बहुतियां नूं प्राप्त होया है
1: सुपतन बात प्रगट करे सतगुर पूरन ख्यात
0: महाराज सच्चे पातशाह ने यह बख्शिश की है कि सुते हुए सिख नूं भावना दे नाल दर्शन दे के सारा कुछ प्रगट कर दिता है जे कहो सुपने च नहीं कुछ हुंदा सुपने च हो जाता है यह गल ना मनन योग नहीं है यह मनन वाली गल है क्योंकि सुपन दर्शन आपां मन्निया होया है फिर चित्र दर्शन प्रतख दर्शन श्रवण दर्शन ये सारा कुछ हो जाता है
1: या अर्थ बिताए सु लिखियो जो सिख सुहात
0: इत्थे जिहड़े अर्थ प्रगट कीते ने जिहड़े सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने पूर्ण अनुभव वाले ने जो सुपने विच बात प्रगट कीती सी उसे दा अर्थ इत्थे प्रगट करके लिखिया जो सिखां नूं सुहांदा है चंगा लगता जिहड़ा गुरसिख नूं करना चाहिदा है
1: पाठक पर पूरन कृपा अर्जन गुरु प्रताप
0: गुरु अर्जन देव महाराज दे प्रताप करके उस पाठक दे उत्ते पूर्ण कृपा है जो गुरां दी दसी हुई मर्यादा मुताबक पाठ करदा है
1: देख पढ़े दे लिख सुने कर पूजा गुरु जा
0: इस करके पाठ जिहड़ा है पाठ नूं पाठक नूं की करना चाहिदा है एक तां पाठक जिहड़ा है पाठ नूं देखे दर्शन करे पढ़े दे लिख जपजी साहब दा पाठ लिख के देवे किसे नूं सुने कर पूजा सुने भी पाठ ते पाठ दे सत्कार नाल पूजा भी करे जाप भी करे जिहड़ा गुरां ने बख्शिश कीता है।

सतगुरु कहिंदे कर हर माला टिंड परोलो। ध्यान दियो जी, जग दियां रूहां एकाग्रता बख्शियो। कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी, खूह आखो वाहिगुरु कर हर टर एक खूह बना। आ जिहड़े सवास ने तेरे इन्हां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना। महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शियो, इस माल नूं जिहड़ा तूं आए नूं खिचे कौन। कहिंदे इस पीतर मन योग सरवण कीता, इस पीतर बलदा की जगह ते इन्हू खिचण नूं किनू जो मन जोड़ो, जो का मतलब जोड़ दो, जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते। कहते इस खूह दियां माला टिंडा खिचण लई मन नूं बलद बनाओ। फिर मन तां साडा सिमरन करदिआं वी दौड़दा रहिंदा है। साहिब कहिंदे ने तूं मन नूं जोड़ के इन्हां टिंडां नूं खिच, ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो, अमृत सिंचो, अमृत ते भरो क्यारे। बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे। जेडे खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया मट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे। खेती बाड़ी करते तुहानूं पता, पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले नूं पता क्यारे पा दी दे। साहब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे। ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछिया, महाराज शरीर ते कहड़े क्यारे ने? आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम। खेतां विच ते क्यारे हुंदे, इत्थे क्यारे कहड़े? कहिंदे अखां नाम जपन वाले दिया अमृत ना भर दिंदियां, अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत वगन लग पैंदा। आखो सतनाम श्री पढ़ते नी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट, बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट। ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत वगन लग पैंदा। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पैंदा है। फिर आखिया महाराज होर केड़ा क्यारा भरीये? महाराज कहिंदे रसना अमृत नाल भर जांदी। गल करन लगदा वा ते कहिंदे फलाना बंदा भजन करदा मुंह चो अमृत डोलदा। नाम जपण वाले दी रसना कदी फिका नहीं बोलदी, नाम जपण वाले दी रसना सदा मिठा बोलदी अमृत वर्गा। साहिब कहिंदे ने मन नूं जो इस सवासां दी माला बना, मगर इह जे बरतना होया जे मन नूं तूं ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं, थल्लेओ अमृत आउणा नहीं। ओह इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई। मन नूं विच जोना जरूरी है। अमृत सिंचो भरो क्यारे, ते अगे लिखे तो मालीए ओह तो गज के बोलो ना तो

पूज भगवाना। हर जस रे मन गायल जो संगी है तेरो, अवसर बीतो जात है गयो मान लय मेरो। संपत रत धन राज सिउ पद नी लगायो, काल फास जग कल करी सब भयो करायो। जान बूझ के बावरे तें काज जगारियो, पाप करत सुख ज्यो नहीं ने गर्भ नवारियो। जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई, जे विद गुर उपदेसे ध्यान दियो, जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई। नानक कहत पुकार के, नानक कहत पुकार के, कहो प्रभ शरण आई, कहो प्रभ शरण आई। नानक कहत पुकार के, नानक कहत पुकार के, नानक कहत पुकार के, कहो प्रभ शरण आई, कहो प्रभ शरण आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी आपको जी वाहिगुरु जी का खालसा।

तरला पाओ तरला, जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो,

0: फिर पहली अग जठर अग्नि, दूसरी अग्न दावा अग्नि जड़ी जंगल नू लगदी है, लिखा घू नू लगदी, तीसरी अग नल अग्नि दसी है जेड़ी गुरमुख प्यारे समुद्र दे पानी नू लगदी, एक चौथी अग महापुरुषां नू पुछया जी आप जी कृपा करके दसो चौथी अग केड़ी, कहिंदे ओ सब तो भयानक आ ते सारे संसार विच लगी आ। आखे जी ओ केड़ी, कहिंदे ईरखा दी अग्नि। कदी तुसी चिड़ी नू किते शीशे अगे बैठे आ वेखो, कदी ध्यान देना एक शीशा नंगा होवे ते आपां इंडिया विच वेने चिड़ी शीशे दे अगे बह जांदी सी, सारा सारा दिन भुखी मर जांदी सी, मगर चुंझां मार मार के अपने मुंह दे विचों लहू कढ लैंदी सी। कहिंदी दूसरी चिड़ी क्यों आ गई, है ओदा ही परछावां है ओहो ही फोटो दिस रही आ, मगर ईरखा दी अग अंदर इनी बल रही आ। कहिंदी जिथे मैं बैठी हां उथे दूसरी चिड़ी क्यों आ गई, चुंझां वेखी आ ना, वेखी है ना चिड़ी शीशे अगे मार मार के चुंझां। ए ईरखा दी अग जानवर तो लैके कीड़ी तो लैके संसार दे हर जीव नू लगी पई आ। मेरे साहब कहिंदे सारा संसार जल रहा है, मेरे मालक ने चंगा कीता है मैनू खुदा दी बंदगी नाल जोड़ दिता है, नहीं तो मैं भी सड़के मर जांदा। बाबा फरीद जी इतना कहिंदे जी,
1: फरीदा जे जाना तिन थोड़े संभल बुक भरी।
0: ये बड़ा प्यारा वचन जे, एक बार सारे आख लिया करो सतनाम श्री वाहिगुरु, नाले ते इथे रहिंदा है चेता रहिंदा वा, नाले परिवार दा ते देह दा भला हुंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जे जाना तिल थोड़े, बोलो जे जाना तिल, तिल समझदे हो आ तिल जिन्हां दा तेल कड्डी दे। बाबा फरीद कहिंदे जे मैनूं इह पता लग जाए कि मेरे कोल तिल थोड़े ने ते फिर बुक भर भर के मकावां ना। ओ किहड़े तिलां दी गल कर रहे ने, ओ अंदरले स्वासा रूपी तिलां दी गल कर रहे ने। प्यार नाल आखो सतनाम श्री। जे मैनूं पता लग जाए कि अज मेरी 40 साल दी उम्र हो गई आ, मैं 50 साल दे विच चले जाणा है, बाकी मेरे 10 साल दे स्वास हैगे ने, ते फिर मैं टीवी अगे बह बह के स्वास ना खराब करा, मैं शराब पी के घराड़े मार के स्वास ना खराब करा, मैं भैड़े कर्मां विच स्वास ना करा, फिर मैं संभल बुक भरी, फिर मैं हर एक आउण वाले स्वास दे नाल जपा सतनाम श्री। जे जाना तिल थोड़े, बोलो जे जाना तिल, फिर बोलो एक बार जे जाना तिल ता संभल बुक भरी। बुक भर भर के जितना मैं स्वास गुवाई जा रहा है, जरा क टाइम मिलता कहना मैं सौ जावा, रात नू 8 बजे दा सुता, सवेर दे 8 बजे तक, ते गुरमुख प्यारे रात नू सुते पिया स्वास ज्यादा खराब हुंदे ने। महापुरुष बाबा प्रीतम सिंह जी राड़े वाले महापुरुष हुंदे सी, उन्हें कदी किसी का बच्चा सुता होना ते तरले पाउणे मां अगे जाके, मेरे हाथ जोड़े ही नहीं सवाणीए अपने बच्चे नू बहुता सौण ना दिया कर। ते मैं पुछना कई बार बाबा जी बच्चा सुता होवे सगो आराम करदा है, कहिंदे परमजीत सिंह जदों बच्चा सौंदा है इहदे दूणे स्वास खराब हुंदे ने, ते आपां की करदे आ, जे बच्चे दे हुंदे साडे वी हुंदे होणगे, आपां वस वाद किस कोबत करदे आ कि जदों साडा टाइम लगे उदों की करिए सौ जाइए। सतगुरु कहिंदे ने ना इस तरह ना करो, जे तुहानूं पता लग जाए कि जीवन दे स्वास बड़े कीमती ने, बिरथा कोई ना जाए, जे आवे तो दे आए, दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए, दम दम नाल जो दम चेतना आवेई सो दम बिरथा जाए। एक करार करिए, एदी कीमत पाइए, एदी कदर करिए अपने स्वास दी। आज जो साईं गुरु नानक पातशाह कह रहे ना एक बार आखो सतनाम श्री, फिर एक बार आखो सतनाम श्री। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के मालिक जो पटने गए ना पटने, इथे सतगुरु गुरु नानक पातशाह मरदाना कहिंदा मैनूं भुख लगी, प्यार नाल एक बार फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहण लगे एक लाल दिता सतगुरु ने, आख्या जा दुकान दे उत्ते वेचिया ते इहदी कीमत पवा के आ। पहलों लैके गया किते चीनी वाली दुकान दे उत्ते, उन्होंने आख्या एक पाइया चीनी दे दांगे, ते मरदाने ने आख्या एडा महंगा ला लिया घट कीमत पाई थोड़ी होर पा, उन्हें कहा अद्धा किलो दे दांगे, उन्हें कहा होर पा, उन्हें कहा इतों वध नहीं। ए तो बाद चले गया किसी कपड़े वाली दुकान ते, उन्हें कहा एक सूट का कपड़ा लै जा, क्योंकि उन्होंने लाल दी पछाण नहीं सी, कीमत का नहीं सी पता। किसी ने दो गज कपड़ा उहदी कीमत पाई, किसी ने गुरमुख प्यारियो उहदी दो चीनी दी दो पाइया चीनी की कीमत पाई, किसी ने अद्धा किलो आटा कीमत पाई, मगर फिर ए लाल लैके सालसराय जौहरी की दुकान ते चले गया। जदों सालसराय जौहरी की दुकान ते जाके ए लाल विखाया ते उहने पहलों ते लाल नूं मत्था टेकिया, आखो सतनाम श्री, ते फिर 101 रुपया मत्था टेक के कहण लगा ए लाल दे दर्शनां दी भेटा है।

कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी नदाना तुमरी महिमा वर्णन सको।

एक मिनट ली शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नू, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं के संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आ, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आ, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

पहले तो कथा खत्म करके गए फ्री मोड। एक बच्ची नाम सी मनजीत कौर आके कह लगी साडे घर प्रशादा छकन चलना है, घर विच विपता बड़ी पई, दुविधा बड़ी घर विच पई। दास ने बेनती की होया, कह लगी बड़े दुखी हां, एक बार आके अरदास करो। मैं क्या हुण समा नहीं, मेरी धीए फिर कदी आऊं, पर मैं तू इत्थे दस की होया तेरे घर विच, तू अमृत छकिया? मैनू इतना लगता वा कि तेरिया बीमारियां का एको ही कारण है कि तू परमेश्वर तो बेमुख है, परमेश्वर तो किते मेरा गुरु कृपा करे, मेरे गुरु नानक वर्गे प्रचारक मिलन, ते कोई पूछे जी मैं बड़ा दुखी हां, ते मेरा गुरु नानक पातशाह आखे जय तन बाणी विसर जाए, तेरे दुखां दा कारण एहो ही हो कि तेनू परमेश्वर दा नाम भुल गया। ओनू बच्ची नू मैं बेनती कीती, मैं कहा धीए अमृत छकला गुरु वाली बन जा, नितनेम करिया कर। मेरे गुरु अमरदास महाराज पातशाह ने एक वचन किया, हर गाओ मंगल नित सखिए, बोलो हर गाओ। फिर एक बार प्यार नाल आप जी नू पता लग जाए, हर गाओ मंगल एक दिन नहीं नित, रोज उठ के नितनेम करिया कर। हे सखी हे जीव आत्मा, फिर सोग दुख ना व्यापे, बाणी पढ़ के वेखो, सोग दुख तेरे घर कोई दुख कोई दलिद्र कदी आवे ही ना, तू रोज उठ के नितनेम करिया कर। कह लगी बाबा जी अमृत ते मैं छकिया सी। मैं क्या फिर परवटे ते तेरे कट्टे ने, बेदबी ते तू रोमा दी कीती है, तू कहनी मैं अमर छकिया? कहिंदी जी ये तुहाडे प्रचारक ने सब कुछ करवाया। और सुन लो हुण मैं जिहड़ा वचन कहण लगा आप जी नूं, मैं कहा जी प्रचारक ने करवाया? प्रचारक दा ते काम हुंदा है कि परमेश्वर दे नाल जोड़ना, टुटे हुए नूं कहना पे प्यारिया परमेश्वर दे नाल जुड़ जा। कहण लगी जी एस कनोगा पार्क गुरुद्वारे, ध्यान देना कनोगा पार्क गुरुद्वारा एले दे विच, चौंकड़े मार के सोरी तरह बैठो सुजेत हो के, कनोगा पार्क गुरुद्वारे एक कथावाच कथा कर रहा है। मैं कहा जी हुण भी? कहिंदी हां। मैं कहा जी ना की है? कहिंदी शब्द प्रकाश सिंह उहदा नाम, ध्यान दिओ शब्द प्रकाश सिंह उहदा नाम है, नखलोग दा रहण वाला है, ते ओ काला इलम जानदा है। आखो सतनाम श्री। मैं कहा जी काला इलम जानदा कोई गल नहीं, फिर काला ते काली दे राहत हुंदी, काला काला ते पाप दा वच किया, फिर कड़ी गल है तेनू जानदा, तू नितनेम कर दी तेनू की हो गया? कहिंदी जी मैं ओनू भी यही बेनती की जिहड़ी तुहानू कीती, कि उहने कहा मैं तेरे घर आण के उहदा इलाज लवूंगा। मेरे घर गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश सी, उहने सब तों ते पहलो आखिया कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे थले काला इलम लिखना है, थले जिहड़ी चादर है ना उत्ते उन्हें पेंसिल दे नाल काला इलम लिखिया। ध्यान दिओ साडे विच कालियां भेडां किन्नियां तुरियां फिरदियां, गुरु नानक दे बाणी दे विच प्रचारकां दे नाम दे उत्ते की कुछ हो रहा है, काला इलम उन्हें थले लिखिया। फिर मैं उन्हूं आखिया कोई मंत्र जंत्र, मंजी मैं ते भुली सां, मैं ते आखिया मैनूं कोई मंत्र जंत्र दसो जिहदे नाल मेरा भला, दुखी बंदा तां हर पासे तुरदा है। उह कहिंदा मेरा जंत्र तां चलूगा जे तूं कृपान लाएंगे जी, गुरु नानक दी बख्शी दसवें पातशाह दी गल विचों कृपान ला, कड़ा ला, कंघा रख दे, केसां दी बेदबी कर दे, कशहरा सतगुरु दा दित्या बख्शे पंजे ककार ला दे, ते फिर मैं अपना मंत्र पढ़ूंगा, पंजे ककार उन्हें मेरे लवा दिते ने, ते फिर भी मेरा बनिया कुछ नहीं, मैनू ते बर्बाद करके रख दिता है। ते फिर गुरु दे सिख भेजे, गुरु प्यारे उन्हूं जाके पकड़िया, पकड़ के उन्हूं पुछया क्यों भाई ये गल हुई है? कहिंदा हां हुई है, मेरे काले मंत्र दे सामने कोई टेक के विखावे मैं ते पटाके पा दूं, इतना दे वचन बोलने लगा। फिर गुरु नानक पातशाह दा प्यारा एक सिख चौंकड़ा मार के बह गया सामने, कहिंदा चला हुण मंत्र तेरा, केड़ा तेरा मंत्र है, चला मेरे सामने, चला मेरे सतगुरु दे मंत्रां दे मंत्र दे अगे, अपना मंत्र जंत्रां दे जंत्र दे अगे। गल विश्वास दी आ, सानू डर आउंदा है, असी गुरु नानक दा मंत्र कमाया नहीं, असी गुरु नानक दे मंत्र उत्ते विश्वास नहीं कीता। गुरु दे प्यारियो चौंकड़ा मार के गुरु दे सिख ने मूल मंत्र दा पाठ शुरू कीता है, दसा मिनटां बाद उठ के कहण लगा जी मेरे कोल गलती हो गई, मेरा मंत्र नहीं चलदा, नहीं चलना ए किसी मंत्र, इस मंत्र अगे कोई मंत्र नहीं चलना, मगर तुसी दृढ़ करके पहलो एदा जाप कर लो, फिर गुरु नानक पातशाह तुहाडे उत्ते रहमता करूगा। हुण ते गुरमुख प्यारियो निकल गया इथो भज के, कोई पटाका भी नहीं पा सकिया, कुछ कर भी नहीं सकिया, क्योंकि चोर ते चोर ही है ना, चोर ते चोर ही, पिंडा विच की कहिंदे चोर दे की नहीं हुंदे पैर, नहीं चोर किते टिकदा थोड़ा, धन गुरु नानक दी बाणी दा कोई उपदेश हुंदा, वड्डे तो वड्डे चैलेंज करन वाले नूं कहिंदा आ पई, ते गवाही देंदा कि ए वेख आ शब्द मेरे गुरु ग्रंथ साहिब दे इस पन्ने ते लिखिया है। मेरा सतगुरु कृपा करे, मैं कह रहा सा जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर उलामा मिले, ताही उलामा मिलता, जे गुरु नानक दा सिख कितों मंत्र जंतर तंत्र कराउंदा है, ते आपां ते सारे कम्मां लई की करना है हर

आधार सत नाम नु आधार बनाओ, परमेश्वर की बंदगी नु आधार बनाओ। आओ हुण रीढ़ की हड्डी सिद्धी करो, समा दौड़ चलिया। मेरा सतगुरु कृपा करे कुछ समा नक की कुरुंबड़ी ते सुरत टका के अंदरले विचार बंद करके जप के वेखो मेरे सतगुरु का अमृत डोलन लग पैंदा है अंदरों। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु ਇਹ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਅਵਰ ਅਪਾਵ ਸਭ ਤਿਆਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਔਲਾਦ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਲਾਗੋ ਗਵਾਂਢੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਉਪਾਅ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਅਪਾਵ ਸਭ ਤਿਆਗਿਆ, ਅਵਰ ਅਪਾਵ ਸਭ ਸਾਰੇ ਅਪਾਵ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ,